मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: दादी, पोता और 70 साल पुराना एक मिट्टी का घर, नानी चो वाड़ो। कोंकण के एक छोटे से गांव की ये कहानी है अपने जड़ों से दोबारा जुड़ने की। सिंधुदुर्ग जिले के पांगरड़ गांव के स्मितेश 6 क्लास के बाद ही अपने गांव से दूर मुंबई चले गए। वहीं पले बड़े और नौकरी भी की, लेकिन सालों के बाद भी सोशल मीडिया पर कोंकण के खूबसूरत वीडियो देखकर उन्हें अपने गांव की याद आती, जिसे वह कहीं पीछे छोड़ आए थे। बस फिर क्या था, उसी

0: हालात को ताजा करने वह कुछ दिनों के लिए गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके 70 साल पुराने मिट्टी के घर की देखभाल उनकी दादी सुनंदा तांबे अकेली ही कर रही है। आज भी वो घर की जमीन लेपती है, सारे त्योहार मनाती है और सादगी से जीती है। यह सब देख स्मितेश ने ठान लिया कि उन्हें भी इसी तरह से जीवन जीना है और शहरी लोगों को कोंकणी संस्कृति से रूबरू करवाना है। इसके लिए स्मितेश ने सबसे पहले अपना कैमरा बेचकर इस घर की मरम्मत करवाई, मिट्टी की दीवारों पर नए छप्पर डालकर उस घर को फिर से जिंदा कर दिया और खोल दिया इसके दरवाजे मेहमानों के लिए, जहां लोग गांव का पारंपरिक जीवन, दादी के हाथों का स्वादिष्ट कोंकणी खाना, त्योहार की रौनक, देसी पेड़ पौधे और पक्षी देखने आने लगे। यहाँ उन्हें ट्रेकिंग और योगा का अनुभव भी मिलता है। यहाँ आने वाले मेहमान यही के जीवन में और दादी पोते की इस सुंदर कहानी में घुल मिल जाते हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी उनकी कहानी तो इस बार छुट्टियों में नानी चो वाड़ो जरूर जाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिए।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: तमिलनाडु के विरुधनगर के एक किसान परिवार में जन्मे प्रताप बचपन से ही पानी की हर एक बूंद की कीमत समझते थे। सालों बाद जब वे तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर बने तब उन्होंने देखा कि जिले में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कई कुएं सूख चुके थे लेकिन दूसरी ओर हर मानसून में सड़कों पर बारिश का पानी भर जाता, लाखों लीटर पानी नालियों में बहकर बेकार चला जाता। तभी उनकी नज़र जिले में मौजूद हजारों बंद और बेकार पड़े बोरवेल्स पर गई। उन्होंने सोचा क्यों ना सूखे बोरवेल्स को फिर से पानी बचाने के काम में लाया जाए। न कोई महंगी तकनीक, न कोई बड़ा बांध, बस एक सरल और समझदारी भरा विचार। उनकी पहल से 1200 से अधिक सूखे बोरवेल्स को रेन रिचार्ज स्ट्रक्चर में बदल दिया गया ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन के भीतर जाकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके। और पहले ही मॉनसून के बाद इस पहल से शानदार नतीजे मिले। कई इलाके में भूजल स्तर 5 से 10 फीट तक बढ़ गया। सूखे कुओं में फिर से पानी आने लगा। हैंडपंप दोबारा से चलने लगे। किसानों को अपनी फसल के लिए पानी मिलने लगा और जो गांव कभी पानी के टैंकरों पर निर्भर थे वहां के कुओं में फिर से पानी लौटने लगा। जिन बोरवेल्स को लोग बेकार समझ चुके थे अब वही पूरे इलाके की जीवन रेखा बन गए। IAS प्रताप की यह पहल याद दिलाती है कि हर समाधान नया होना जरूरी नहीं, कई बार जवाब उन्ही चीजों में छुपा होता है जिन्हें हम बेकार समझ कर छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत के दूसरे शहरों में भी ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: मेघालय का ये वर्ल्ड फेमस रूट ब्रिज बस एक 10 साल के बच्चे की सोच का नतीजा है। हेली वॉर जब 10 साल के थे तब उन्होंने देखा कि तेज बारिश के दिनों में उनका पूरा गांव नदी से कट जाता था। समस्या बड़ी थी लेकिन समाधान उन्हें मिला दादी नानी की उन कहानियों में जहां पेड़ों की जड़ों से पुल बनते थे। बस यहीं से शुरू हुआ एक सफर जिसमें ना तो मशीनें थी ना इंजीनियरिंग की डिग्री। हेली ने रबर ट्री की जड़ों को बांस और लकड़ी के सहारे मोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें जोड़ते गए। ये एक दो दिन का काम नहीं था, 20-30 साल की मेहनत लगी। जैसे जैसे हेली बड़े होते गए वैसे वैसे पुल भी बड़ा और मजबूत होता गया। आज हेली 69 साल के हैं और उनका बनाया लिविंग रूट ब्रिज हर साल 10,000 से ज्यादा लोग देखने आते हैं। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, मेघालय की खासी और वार जनजातियों की जिंदा विरासत है। साल 2022 में यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया और अब 23 साल के मॉर्निंग स्टार होंग थॉ इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो गांव जाकर लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे जड़ों से सिर्फ पुल ही नहीं झूले, बैठने की जगह और टनल भी बनाई जा सकती है। हेली वॉर और मॉर्निंग स्टार का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन एक गहरा रिश्ता है जड़ों से, मिट्टी से और इस जिंदा विरासत से। एक ने इसे बनाया, दूसरा इसे संवार रहा है और इस तरह एक 10 साल के बच्चे की सोच आज दुनिया को सिखा रही है कि अगर जड़ें मजबूत हों तो उनसे सपनों के पुल भी बन सकते हैं।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: पिछले 6 सालों से इस कॉलोनी से कोई भी कचरा बाहर नहीं गया। यह है साउथ दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी, जहां 280 घरों से रोज 300 किलो कचरा निकलता है, लेकिन उसमें से कुछ भी लैंडफिल में नहीं जाता। यह बदलाव शुरू हुआ 8 साल पहले, जब डॉक्टर रूबी मखीजा RWA की सेक्रेटरी बनी। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानती थी कि साफ सफाई का हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर होता है, इसीलिए उन्होंने सामूहिक स्तर पर बदलाव लाने पर जोर दिया। सबसे पहला कदम, हर घर को समझाना कि वे अपना कचरा खुद छांटे, यानी गीला, सूखा और हजार्डस वेस्ट। दूसरा, सफाई कर्मियों को अलग अलग कचरा इकट्ठा करने के लिए मनाना। इस पहल से आज हर दिन 125 किलो गीले कचरे की खाद बनती है, जिससे कॉलोनी के बगीचे हरे भरे हो रहे हैं। वहीं सूखा कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था, लोगों को बदबू का डर था। हेल्पर्स ने कहा यह हमारा काम नहीं। तब रूबी और उनकी टीम घर घर गई। उन्होंने डस्टबिन के बारे में लोगों को समझाया, इस पहल के फायदों की जानकारी दी, रोजाना अपडेट, वीडियो और सर्कुलर भेजना शुरू किया ताकि सभी लोग जुड़े रहें। धीरे धीरे यह बदलाव पूरी कॉलोनी की आदत बन गया। उन्होंने एक RRR सेंटर भी शुरू किया है, जहां लोग अपने पुराने कपड़े, फर्नीचर, यहां तक कि गैस सिलेंडर तक डोनेट करते हैं। इस पहल से अब तक 30 टन से ज्यादा सामान NGO के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा चुका है। इतना ही नहीं, कॉलोनी को सस्टेनेबल बनाने के लिए बारिश का पानी भी जमा किया जाता है। टैप पर पानी बचाने वाले एरिएटर लगे हैं। साथ ही यहाँ एक कम्युनिटी फ्रिज भी है, जहाँ लोग अपना बचा हुआ खाना जरूरतमंदों के लिए रखते हैं। इस कॉलोनी से अब तक 3000 किलो ई वेस्ट जमा हो चुका है, 17 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया गया है और एक भी कचरे का बैग लैंडफिल में नहीं गया। क्या आपके मोहल्ले में उठाया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसा ही कोई कदम?
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: गांव में जब कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है तो लोग गर्व से कहते हैं हमारे गांव का लड़का है, लेकिन अगर कोई कैमरा लेकर घूमे तो सवाल पूछते हैं ये क्या कर रहा है। राजस्थान के असाड़ा के यश चौधरी को भी यही सुनने को मिला। एक छोटे से गांव से निकलकर कैमरे की दुनिया बसाने वाले यश के लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को बचाने

0: करने की जिद थी। जहां लोग बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए भागते हैं, उन्होंने चुना अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का रास्ता। गांव की गलियों, पुराने घरों, बुजुर्गों की कहानियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर दुनिया तक पहुंचाया। पर गांव में लोगों को समझाना मुश्किल था। कभी लोग हंसे, कभी बोले इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यश के सपनों पर उनके घर वालों को भरोसा था। पहला DSLR कैमरा भी पिता ने ही दिलाया था। आज उनकी तस्वीरें सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया को भारतीय संस्कृति की असली झलक दिखा रही है। अब उनकी पत्नी संतू चौधरी भी इस सफर में उनके साथ है। जिस समाज में अब भी पर्दा प्रथा है, वहाँ उन्होंने एक नया रास्ता चुना, संस्कृति की सुंदरता को पूरे सम्मान के साथ दुनिया तक पहुंचाने का। जब लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ये कलाकार अपने गांव की कहानियों को कैमरे में कैद कर रहे हैं, ताकि हमारी परंपरा बस यादें ना बने बल्कि हमेशा जिंदा रहे। उनकी हर तस्वीर यही कहती है, अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि वही असली पहचान है। यश की तरह हम सबके पास भी एक रास्ता होता है कि या तो दुनिया की दौड़ में सपने भूल जाएं, या फिर अपना रास्ता खुद बनाएं। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे?
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 28 साल की मेहनत, एक रिटायर्ड दंपति और पक्षियों के लिए बना 6000 पेड़ों का जंगल, ये कहानी है गुजरात के दिनेश चंद्र ठाकर और उनकी पत्नी देवेंद्रबेन ठाकर की, जिन्होंने बंजर जमीन को सींचा, सालों झोपड़ी में रहे और एक पौधे से शुरुआत कर 3 एकड़ जमीन को बना दिया हरा भरा निसर्ग निकेतन। आज यहां 200 किस्मों के 6000 पेड़ खड़े हैं। उनकी इस निस्वार्थ सेवा के पीछे है 1984 की भीषण गर्मी और एक करुण कहानी।
2: उसी वक्त हमने कोयल, बुलबुल ऐसे छोटे मोटे पक्षी को मरते हुए देखा। पेड़ पर से गर्म तापमान के कारण नीचे गिर जाते थे। उनका दुख हम दर्द हम देख नहीं सके, तो हम दोनों ने, मेरे पति और हम दोनों ने निश्चय किया कि हम ऐसा निसर्ग बनाए कि जहाँ पक्षी को दाना, पानी और रहने का आश्रय मिले।
1: दोनों तब स्कूल में पढ़ाते थे और रिटायरमेंट से पहले ही प्रकृति की सेवा का फैसला कर लिया। फिर 1999 में गुजरात के धनोरा गांव में 3 एकड़ बंजर जमीन खरीदी, लेकिन यहां हरियाली फैलाने का काम आसान नहीं था, न बिजली न सुविधाएं। कई सालों तक वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहे, खुद एक एक पौधा लगाते और पानी देते रहे। भीषण गर्मी में कभी पौधे सूख जाते तो कभी जानवर उन्हें खा जाते, लेकिन वे रुके नहीं, सालों तक उसी जज्बे के साथ अपने मिशन में जुटे रहे। धीरे धीरे बैर, इमली, कचनार जैसे देसी पेड़ बढ़ने लगे और उसके साथ ही लौटने लगे पक्षी। आज निसर्ग निकेतन मोर, तोता, बुलबुल सहित सैकड़ों पक्षियों का घर बन चुका है, जिनके लिए दिनेश भाई और देवेंद्रा बेन आज भी हर दिन 100 किलो अनाज और पानी की व्यवस्था करते हैं। इन पक्षियों के लिए ही उन्होंने निसर्ग सेवा ट्रस्ट भी बनाया है, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब वे गांव में 10 और ऐसे जंगल विकसित कर रहे हैं। जिस जमीन को कभी गुजरात का मिनी रण कहा जाता था, आज लोग वहां हरियाली और पक्षी देखने आते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक मजबूत इरादे वाले दंपत्ति की बदौलत, जो आज 75 और 78 की उम्र में भी आराम करने की जगह प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। आइए उनकी सेवा और समर्पण का सम्मान करें।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब के साथ जयपुर के ये युवा कर रहे हैं शहर की ऐतिहासिक जगहों को साफ।
2: अभी तक कर्तव्य टीम ने 6000 किलो प्लस केजी का कचरा उठाया है, जिसमें से 3000 केजी प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक है। यह कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि हमारी हेरिटेज साइट्स और पब्लिक स्पेसेस को एक सांस दिलाने की एक पहल है।
1: छुट्टी के दिन जब सभी आराम कर रहे होते हैं, तब कर्तव्य टीम के सदस्य निकल पड़ते हैं सफाई करने, ताकि कचरे का ढेर बन चुकी शहर की एक धरोहर फिर से जिंदा हो सके। एक साल पहले जब 3 दोस्त संदीप, मोहनीश और पुष्पेंद्र ट्रैकिंग और साइकिलिंग के लिए आसपास के पहाड़ों पर जाते थे, तब उन्हें हर बार खूबसूरती से ज्यादा कचरा दिखाई देता था। नजरअंदाज करने के बजाय उन्होंने वो कचरा उठाना शुरू किया। धीरे धीरे ये छोटी सी कोशिश उनका मिशन बन गई। कुछ दोस्तों ने उनका साथ दिया तो कुछ ने कहा, ये सरकार का काम है, तुम नौकरी के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय लोगों को जागरूक करने का काम किया।
3: गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्लीनिंग कर चुकी है, उसके बाद है ये कचरा, और अभी कचरा और भी है।
1: ऑफिस के लोगों को जोड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप और कर्तव्य टीम बनाकर हर वीकेंड युवाओं को बुलाना शुरू किया, कभी पेंटिंग वर्कशॉप तो कभी हेरिटेज वॉक का बहाना बनाकर। अपने शहर को साफ करने के लिए एक नहीं सैकड़ों युवा एकजुट हो गए।
4: इन जनों का इनिशिएटिव आज 250 लोगों का टीम, ये इनिशिएटिव बन चुका है यूथ लेड इनिशिएटिव, जिसमें जेन ज़ी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।
1: जमा किया हुआ वेस्ट वो खुद अलग करते हैं, फिर उन्हें रिसाइकलिंग के लिए नगर पालिका को सौंप देते हैं। आज जयपुर शहर का जल महल, पत्रिका गेट और सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ कुंड, टूटन की बावड़ी, हाथनी कुंड, झालना लेपर रिजर्व जैसे पब्लिक प्लेसेस हमेशा साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ युवा हैं जो कंप्लेन नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
0: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
1: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
0: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
1: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
0: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
0: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
0: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
0: जी।
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
0: जी।
1: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
0: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
0: जी।
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
0: जी।
1: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
0: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
1: जी। विमलेश जी श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
1: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया

यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वुमेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एमयू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है।

0: ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहां छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हां, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने

0: आपको प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
1: लेकिन मिस्टर नीत जी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
0: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
1: कैसे चित्र?
0: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
0: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
0: आइए।
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
1: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
1: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
0: गुफाओं में तो नहीं, आप पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
0: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा,
0: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
1: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
0: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
1: वाकई कमाल है।
0: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
1: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
0: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
1: सच?
2: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: તમે સાંભળી રહ્યા છો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર। હું પ્રિયરાજ સૌ બાળ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું બાળ સભામાં।
9: જંગલમાં એક સિંહ રહેતો હતો, તે રોજ શિકાર પર નીકળતો, અને તેને ભૂખ હોય કે ન હોય પણ તે મન ફાવે તેટલા પ્રાણીનો શિકાર કરતો। આથી રોજ ઘણા પ્રાણીઓ વિના કારણે મરતા હતા।
10: ગભરાયેલા બાકીના પ્રાણીઓ સિંહના હુમલા સામે શું કરવું તે વિચાર કરવા ભેગા થયા। સભામાં બધાએ એવું નક્કી કર્યું કે રોજ એક પ્રાણી સિંહના ખોરાક તરીકે જાય

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अर्चना और आज हमारे रेडियो स्टेशन पर बहुत ही खास दिन हमारे लिए। एक ऐसी ग्लिसनिंग डायमंड जैसी आवाज हमारे साथ स्टूडियो में है आज, लता दीदी हमारे साथ। ऐसा लग रहा है कि एक अरसा गुजर गया उनसे मिलके। जिस साथी के साथ आप गाती हैं और रहती हैं उसी सादगी के साथ आपकी आवाज़ हो जाए रेडियो स्टेशन पे लाइव।

0: इश्क हमारा मुकम्मल नहीं, जीना जुल्म जिंदगी जहन्नुम ही सही। कबूल है कत्ल होना दफन हो जाना, मगर तेरा इश्क खैरात में मांगेंगे नहीं।
1: तुम्हारी पास है सुंदर मजानी कविताओ, गजल के शेर, शायरी
2: अथवा तो तुम्हें कई लगता हो साहित्य, साहित्य में वार्ता हो तो ए रजू करवा माटे तुमने प्लेटफॉर्म जोये छे तो ए प्लेटफॉर्म अमे आपीशु।
1: रेडियो पालनपुर पर जो तुम्हारा में सिंगिंग टैलेंट छे के पची कोई पण वाद्य ने तुम्हें वगाड़ी जानो छो तो आप सब माटे पण प्लेटफॉर्म छे
2: रेडियो पालनपुर। तुम सारू लखो छो तुमने मोकलावी शको छो अथवा तो रूबरू અહીંયા આવીને રેકોર્ડ પણ કરી શકો છો, પરંતુ હા એની જાણકારી અમને પહેલાથી આપવી પડશે અમારા રેડિયો પાલનપુરના વોટ્સએપ નંબર પર 9512966888 પર।
1: આપનો અવાજ આપણા સૌ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરશે રેડિયો પાલનપુર 90.4 મેગાહર્ટ્ઝ। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો, સાંભળતા રહો
2: રેડિયો।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं होल किटले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छे के कोई पण कार्य एकला हाथे सफल पार थतुं नथी, एटले के कोई नो साथ अथवा टेको होय ज छे। परंतु हमेशा एवी व्याख्या करी शकाय के आजूबाजू घणा बधा लोको होवा छतां पण एवा कया व्यक्तिने आपणे पसंद करवो जोईए के ए आपणी पासे हमेशा आपणो आधारस्तंभ बनी रहे अने आपणे आम छाती

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ, और आज के इस एपिसोड में हम उन एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बगैर किसी स्टारी बैकग्राउंड के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी गॉडफादर के, खुद के बलबूते पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। वो सितारे जो सेल्फ मेड हैं और आज हिंदी सिनेमा को जिन पर गर्व है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उस अभिनेता की जिन्होंने एंटरटेनमेंट को एक नया नाम दिया, जिनका मानना था कि नेशनलिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, और उन्होंने ये अपनी फिल्मों के साथ में दर्शाया। मैं बात कर रही हूँ मनोज कुमार जी की। वैसे मनोज कुमार जी का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। मनोज साहब ने काफ़ी ऐसी बॉलीवुड फिल्में दी हैं जो हमेशा याद रहेंगी, स्पेशली उपकार, क्रांति, शहीद, जहाँ पे उन्होंने देशभक्ति को प्रमोट किया। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन में भी बहुत काबिल थे मनोज जी। इनफैक्ट उनका तो सपना था कि वो डायरेक्ट करें दिलीप कुमार जी को, और वो पूरा भी हुआ क्रांति फिल्म के साथ। अनडाउटेडली मनोज साहब ने अपनी फिल्मों के द्वारा बॉलीवुड में पेट्रियाटिज्म जिंदा रखा। ऑल्सो एक बार खबरें तो ऐसी भी आई थी कि धर्मेंद्र साहब बॉम्बे छोड़ करके चले जाना चाहते थे क्योंकि उनका लक ज़्यादा चल नहीं रहा था, लेकिन उस समय मनोज जी ही थे जिन्होंने उन्हें रोका और कहा कि अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। मनोज कुमार जी की मेहनत के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, और चलिए अब मेहनत से बनाया हुआ हमारे मिस्टर भारत, इस नाम से भी जाने जाते थे वैसे मनोज जी, तो उन्हीं का गाना सुनते हैं अगली फिल्म से, लग जा गले गाना। वो कौन थी फिल्म से लता जी की आवाज़ में।

रफी साहब की आवाज में काला बाजार से था ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज जो गाने मैं आपको सुना रही हूँ वो कुछ ऐसे सितारों के हैं जो कि सेल्फ मेड स्टार्स हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, फिल्म काला बाजार में मुगले आजम फिल्म का प्रीमियर दिखाया गया था और देव साहब का कैरेक्टर जो था वो ब्लैक मार्केटिंग करता है इस प्रीमियर शो के टिकट्स की। वैसे अपने टाइम के सुपरस्टार देव साहब को प्यार से चिरू भी बुलाया करते थे लोग। उनकी फैन फॉलोइंग तो आप जानते ही हैं कितनी रही होगी उस समय। आप क्या ये जानते हैं कि उन्हें पब्लिक में ब्लैक सूट पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि लड़कियां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और कहते थे कि कहीं कोई आपको देख के किसी खिड़की या बालकनी से जंप ना कर दे, इसलिए आप यूं कहर मत ढाइए। वैसे तो पहली बार एज लीड रोल उन्हें जिद्दी फिल्म में देखा गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें अपना पहला ब्रेक अशोक कुमार जी ने दिया था, वो भी यूं ही चलते फिरते। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था कि अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज के गार्डन में अपने दोस्त से कुछ डिस्कस कर रहे थे कि किसे कास्ट करना चाहिए उनकी फिल्म के लीड रोल के लिए, और तभी कोइंसिडेंटली देव साहब भी वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था, उन्होंने देव साहब को देखा और उनकी फिल्म के लिए देव साहब को भी एज अ हीरो साइन कर लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर सक्सेसफुल इंसान की शुरुआत एक स्ट्रगल के साथ होती है। देव साहब ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था। एक्टिंग से पहले उन्होंने एक अकाउंटेंसी फर्म में एज अ क्लर्क काम किया था और उससे उन्हें सिर्फ कुछ 85 रुपए की सैलरी मिला करती थी। खैर, इतना स्ट्रगल किया उसके बाद ही तो वो इतने बड़े स्टार बन पाए, अ सेल्फ मेड स्टार देव साहब। उन्हीं की फिल्म से अगला गाना, गाइड फिल्म से अगला गाना आपको सुनाऊंगी मैं किशोरदा और लता जी की आवाज़ में, और कुछ देर के बाद आपको बताऊंगी कि कैसे एक नॉर्मल सा इंसान रवि कपूर बना सुपरस्टार जितेंद्र।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में था ये गाना कारवां फिल्म से, जितेंद्र साहब की ये फिल्म। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स रहे हैं जितेंद्र जी अपने ज़माने में, है कि नहीं? नाम वैसे इनका रवि कपूर हुआ करता था, और बॉलीवुड में इनकी जिस तरह से एंट्री हुई उसकी कहानी भी बड़ी फिल्मी ही है। जी हाँ, जीतू जी ने तो सोचा भी नहीं था कि वो कभी एक्टिंग करेंगे। वो तो अपने माँ बाप के साथ में उन्हीं के प्रोफेशन, उन्हीं के बिजनेस में मदद किया करते थे। हुआ यूँ कि उनके पेरेंट्स इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस किया करते थे, और एक दिन वो वी शांताराम जी से मिलने गए ज्वेलरी सप्लाई करने के लिए। शांताराम जी को ये क्यूट सा हैंडसम सा लड़का इतना पसंद आ गया कि उन्होंने जितेंद्र जी को नवरंग फिल्म का ऑफर दे दिया। जीतू जी ने भी मौके पर चौका मारा और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे कुछ हुई हमारे जीतू जी के करियर की शुरुआत, और वो शांताराम जी ही थे जिन्होंने रवि कपूर का नाम बदल के जितेंद्र किया। आप तो जानते ही हैं कि जीतू जी हिमा जी से प्यार किया करते थे, जो भी कहो लाइकिंग तो थी उस समय, लेकिन बाजी मार ले गए धर्मपा जी। वैसे धर्मेंद्र जी ने भी काफ़ी तरकीबें करी थी बॉलीवुड में आने के लिए। वो हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे, और वो उनकी माँ थी जिन्होंने सजेस्ट किया था धर्म जी को कि क्यों ना तुम एक रिक्वेस्ट लेटर लिख करके भेजो। तो उन्होंने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट में अपनी फोटोज़ के साथ एक लेटर भेजा था एप्लीकेशन के साथ में, और बस किस्मत चल पड़ी, पंजाब से धर्मपा जी मुंबई आ गए, कॉम्पिटिशन जीत गए, और फिर 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्होंने डेब्यू किया। आइए सुनते हैं धर्मपा जी की ही फिल्म लोफर का गाना, आज मौसम बड़ा बेईमान है।

मैं हूं रुचि आपके साथ। ये गाना था दिलीप कुमार जी की फिल्म मधुमति से। ऐसा दिलीप साहब जैसे लिविंग लेजेंड जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है हिंदी सिनेमा में, उनके पास एक ज़माने में इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने घर से स्टूडियोज तक जा पाए। उस समय जो BCCI के प्रेसिडेंट हुआ करते थे PM रुंगता जी, उन्होंने दिलीप कुमार जी को बड़ा सपोर्ट किया था उस समय। ट्रैम के टिकट्स के पैसे भरना, बाकी कुछ यूं ही रोज़मर्रा के खर्चे के लिए पैसे देना, वो सभी मदद किया करते थे दिलीप साहब की जब वो एक स्ट्रगलर थे। लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई, उन्होंने तो एक्टिंग को एक नया परिचय ही दे दिया। ही वॉज ट्रूली अ सेल्फ मेड स्टार। ऐसे एक्टिंग के अलावा और किसी चीज़ के लिए अगर वो पॉपुलर थे तो वो थी उनकी लव स्टोरी सायरा बानो जी के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि सायरा बानो जी की ज़िंदगी में सबसे पहले दिलीप साहब ही आए तो आप गलत हैं। सायरा जी और राजेंद्र कुमार जी भी बड़ी चर्चाओं में रहा करते थे। काफ़ी सारी मूवीज़ इन दोनों ने साथ में की थी, तो शूटिंग के दौरान दोनों में थोड़ा प्यार सा उमड़ गया था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त राजेंद्र जी ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनकी वाइफ ने सायरा जी की मम्मी नसीम बानो जी से कहा कि वो अपनी बेटी को राजेंद्र साहब से दूर रखें। फिर क्या था, नसीम जी ने दिलीप साहब से कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो पसंद करते ही हैं। दिलीप साहब ने साफ मना कर दिया था क्योंकि सायरा जी उनसे 20 साल छोटी थी उम्र में। लेकिन नसीम बानो जी ने जैसे तैसे दिलीप साहब को कन्विंस कर ही लिया और कुछ ऐसे दिलीप साहब ने राजेंद्र साहब की शादी भी बचा ली। वैसे राजेंद्र जी भी एक सेल्फ मेड स्टार थे, बेहतरीन मूवीज दी हैं इन्होंने अपने समय में, और इन्हीं की फिल्म संगम से सुना रही हूँ मैं आपको अगला गाना।

0: Subscribe.
1: Subscribe.
2: Subscribe to Luca.
1: Subscribe.
3: कुछ ना कहो बस सब्सक्राइब
0: कर दो यार सब्सक्राइब
3: प्लीज सब्सक्राइब
2: बोलो ना प्लीज सब्सक्राइब प्लीज
1: सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुछ ना कहो
3: कुछ भी ना
1: सब्सक्राइब
4: मस्त रहो व्यस्त रहो सांभरता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।